खंडन। आपे सब कट भोग वै स्वामी, आपे ही सब अंजन। आप विवेक आप सब बेता, आपे गुरमुख भंजन।

गुरमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरमुख आप वडाई देवे सोए, गुरमुख शब्द सच करणी सार, गुरमुख नानक परवारे साधार, वडहंस महला तीजा।

खसम कढाए किरत कमावना, मंदाक सैना आख झगड़ा पावना, नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप वन्यावना, जिस नाल संगत कर श्री की जाए क्या रुआवना, जो दे सहना मन है कहना आख नाही वावना।

राम समर्थ शरणा जोग स्वामी कृपा निध सुखदाता हों कुर्बानी दास तेरे जिन्नी एक पछाता।

गुण छोड़ बिखल दिया अब गुण का बन जारो। पुंडड़े नाम विसारिया बुडड़े क्या तिस चारो गुण

जाए। एक रोव है पिर है विशुनिया, अंधी ना जाने पिर नाले। गुर प्रसादी साचा पिर मिले, अंतर सदा संभाले।

पौड़ी। तिस मिलिया सतगुर सज्जन जिस अंतर हर गुणकारी, तिस मिलिया सतगुर प्रीतम जिन होमै विच होमारी। सो सतगुर पूरा धन धन है जिन हर उपदेश दे सब सृष्ट सवारी। नित जपे हो संत हो राम नाम पौ जल बिखतारी। गुर पूरे हर उपदेसया गुर विटड़े हो।

पौड़ी। सो सतगुर सेव हो साध जन, जिन हर हर नाम दृढ़ाया। सो सतगुर पूजहो दिन सरात, जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया। सो सतगुर देखो एक निमख निमख,

ते संत भले गुरसिख है जिन नाही चिंत पराई चुख तन तहंत ना का गुरु है जिस अमृत फल हर लाग मुखा। श्लोक महला तीजा।

जाए। सतगुर मिलै तन निर्मल होवै, हर नामो मन वसाए। नानक नाम त्याया सुखदाता, दुख विसरिया सहज सुभाए। पौड़ी जिन जग जीवन उपदेसिया, तिस गुर कौ हों सदा पुमाया। तिस गुर कौ हों खनिए, जिन मधुसूदन हर नाम सुनाया।

नानक गुरमुख सदा सुख पावे है, अन दिन हर बैरागी पौड़ी। से गुर सिख तन तन है, जिन्नी गुर उपदेश सुनिया हर कन्नी। गुर सत गुर नाम।

पछाता सफल जन्म जग आया हर रस चाख सदा मन तृप्तया गुण गावे गुणी अगाह्या कमल प्रगा सदा रंग राता अनहद शब्द बजाया।

चात्रक जल, ज्यो चात्रक जल बिन बिल लावै, बिन जल प्यास न जाय। गुरमुख जल पावै सुख सहजे, हरिया पाए सुपहाई।

भया भिखारी अक्षत राज बिशरत दुख पाया सोगत पई हमारी। राज पोयंग प्रसंग जैसे है अब कश मर्म।

रहे सब गावे हर हर उत्तम बानी गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पावे जिन सत गुर की आज्ञा सत सत कर्म।

जुग महें धर्मा जन कौ नाम वडाई सोभ नामो गत नामो पत जन की माने जो जो होग रहाओ नाम तन जिस जन कै पालै सोई पूरा शाह नाम ब्योहारा नानक आधारा नाम

जवां। मांगौ राम ते सब थोक, मानुख कौ जाचत श्रम पाइय, प्रभ कै सिमरन मोख रहाउ। कोखे

अनक जन्म भ्रम थित नहीं पाई, करो सेवा गुरला गौं चरण, गोविंद जी का मार्ग देहो जी बताई रहाओ।

तीर्थ नावन जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ, दस पुरप सदा दशा।

हर हर हर हर भगत दृढ़ावहो, हर हर नाम उमाहाराम, हर हर नाम दयाल त्याहा, हर कै रंग सदा गुण गाहा, हर हर हर

परमेश्वर है, आद पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वतर रमणं, नानक अगनासन जगदीश्वर है। पेखन सुनन सुनावनो मन महेंद्रिय साच, पूर रहयो सर्वतर मैं नानक हर रंग राच। पौड़ी हर एक निरंजन गाई है, सब अंतर सोई, करण कारण समरथ प्रभ जो करे सो होई। खिन मह थाप उथापदा तिस बिन नहीं कोई, खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी, निर्मल जन सोई। सलोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं सा

हर कथा हर जस साध संगत स्यो एक मोहत न एव मन लायो बिगस्यो पेख रंग कुसुंभ को पर ग्रह जोहन जायो चरण कमल स्यो पाओ न कीनो नह सतपुरख मनायो तावत कौ ताव है बहु भांति ज्यों तेली बलद परमायो नाम दान इशनान ना

जस उत्तम खट दर्शन गाव है राम। शंकर करोड़ तैतीस ते आयो नहीं जान्यो हर मरमाम। सुर नर गण गंधर्व जस गाव है।

मन मिल संत जना जस गायो, मन मिल संत जना जस गायो, हर हर रत्न रत्न हर नीको, गुर सत गुर दान दिवायो रहाओ। तिस जन को मन तन सब देवो, जिन हर हर नाम सुनायो।

ऐसा इस हर धन का शाह हर आप है संत हो। इस हर धन का शाह हर आप है संत हो, जिसनों दे सो हर धन लद चलाई।

शब्द सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिप्त साचे रंग राता गुर कै सहज सुभाए। मानमुख

सरोवर है वडभागी पुरख लहन। गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन। सेवक गुरमुख खोजया से हंसले नाम लहन। नाम ध्यान रंग स्यों गुरमुख नाम लगन। तुर पूरब होवै लिखया गुर भाणा मन लैन। वडभा

हो सुख फल हर जन पावहु नानक कह सुनहु जन पाई सुख सो हिलड़ा हर त्यावहु सुन हर गुण तीने सह सुभाए गुरमत सहजे नाम ते आए जिन को तुर लिखिया तिन गुर मिलिया तिन जन्म मरण पौ भागा।

आनंदिनो शब्द रवहो अनहद शब्द बजाए राम अनहद शब्द बजाए हर जियो कर आए हर गुण गाव हो नारी आनंदिन भगत करहें गुर आ गए सा धन कंत प्यारी गुर का शब्द वसे।

सब महे रव रहया सो प्रभ अंतर जामी राम गुर शब्द रवै रव रहया सो प्रभ मेरा स्वामी राम प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी घट घट रवया सोई गुरमत सच पाइया।

मोह मद सगल ब्यापी कर कृपा आप निवारे कहो नानक पै सागर तरिया पूर्ण काज हमारे गुण गोपाल गाव हो नित सखी हो।

ज्यो हर पावै भगवाना। कहत नानक तू साचा साहिब कौन जाने तेरे काम। एक ना करम है दे वड्याई एक परम भव है अवे महाना। बिलावल महला तीजा पूरा।

मन अभिमाना, कहत सुनत सभे सुख पावहे, मानत पाहे निधाना। बिलावल महला तीजा। गुरमुख प्रीत जिसनों आपे लाए, तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए।

तन तन हर साध जन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया जाय बस हो वडभागनी सखिए संतां संग समाइए तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापे चरण कमल लिव लाइए तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापे चरण कमल लिव लाइए तह जन्म ना मरण ना आवन जाना।

आप प्रगटना, आप ही घट घट आप अलिपना, आपे अवगत आप संगरचना। कहो नानक प्रभ के सब जचना, बिलावल महला पंजवां।

पटल बिसरिया वड्डा पहाग प्रभ कीर्तन गाया संत संग नानक प्रभ पाया बिलावल महला पंजवां।

निस्बा सरमन अनद होत चितवत किरपाल रहाउ। जगत उदाहरण साध प्रभ तिन लाग हो पाल, मोकौ दीजै दान प्रभ संतन पगराल। उक्त सिया

रहाओ। खोजत खोजत खोजया ना मैं बिन कूर, जीवन सुख सब साध संग प्रभ मनसा पूर। जित जित लाभ हो।

साध संग मन तन हितै फिर दुख न जापै हर हर हर हर जापिया अंतर लिवलाई किल विख उतर है शुद्ध होए साधु सरनाई सुनत जपत हर नाम।

रहाओ। करण कारण समरथ है तिस बिन नहीं होर, नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर। बिलावल महला पंजवा सिमर सिमर।

दृष्ट दृष्टाए अब महान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अब महान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अब महान खोए खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अतुल अतुल अतुल नह तुलिया।

जरे अंधकूप मह परे ओ प्राणी परम गुबार मोह बंध परे परम गुबार मोह बंध परे। कहो नानक प्रभ होत दयारा गुर भेटै काढ़ै बाह फरे। बिलावल महला पंजवां।

रख रख चरण हर ताल पुरैया, हर कै रंग रत्ता मन गावै, रस रसाल रस शब्द रवैया, निज कर धार चुवै।

राम जिन मानस जन्म ना पाया तिन भाग मंदेरा राम हर हर हर हर राख प्रभ नानक जन तेरा राम गुर हर प्रभ अगम।

अनक जतन कर राखी है फिर लपटाई। जरा जीवन जोबन गया किश किया ना निका, इहो जी अरा निर्मोल को कौडी लग मीका।

में सगले कुल उधरे नाम हमारे कार्य सीध नाम संग मनुआ गीध नामे ही हम निरपौ पहे नामे आवन जावन रहे।

सत पछाणे। ऐसा ज्ञान विचारै कोई तिसते मुक्त परम गत होई रहाओ। दिन मह रैन रैन मह दिनियर उसन सीत बिद सोई। ताकि गत मित अवर न जाने गुरबिन समझना।

खिन महवेश करहे नटुआ ज्यों मो पाप महंगलत गया। इत उत माया देख पसारी मो माया कै मगन भया करहें बिकार विथार कन्हेरे सुरत शब्द बिन भरम पया हौ मैं रोग महा दुख लागा गुरमत ले वह रोग गया। सुख संपत कौ आवत देखें साकत मानं अभिमान पया।

गुरमुख के ती शब्द उधारी संत हो रहाओ। ममता मार होम सुख है त्रिभवन जोत तुम्हारी, मनसा मार मने महरा खै

तर नाम नर हर निदान जिनकै रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्यायणा।

छंत प्रभ विपत निवारण तिस बिन अवरना कोय जियो सदा सदा हर सिमरिय जल थल महियल सोए जियो जल थल महियल पूर रहया एक निमख मन होना विसरै गुर चरण लागे दिन सभागे।

चारो दर्शन पेख करहो जोगिंद्रा मुंद्रा चोली खिंथा बारह अंतर एक सरे बहो खट दर्शन एक पंथा इन बिद मन समझाइए पुरखा बाहुड़ चोट ना खाइए नानक बोले गुरु।

कंध सहज गुफा कर जाने साचा नानक साचे भावै साचा किस कारण रह तजो उदासी किस कारण इहो भेख निवासी किस वखर के तुम वनजारे क्यों कर साथ लंघावहो पारे गुरमुख खोजत पए उदासी दर्शन कै ताई भेख निवासी साच वखर

कवन मुख चंद हिवै कर छाया, कवन मुख सूरज तपै तपाया, कवन मुख काल जोहत नित रहै, कवन बुद्ध गुरमुख पत रहै, कवन जोत जो काल संहारै, बोलै बाणी नानक बिचारै, शब्द भाख

नानक आए से प्रवान पहे जे सगले कुल तारेन महला तीजा। गुरु जिन्ना का अंधला सिख भी अंधे कर्म करे ओए पहाणे चलन अपने नित झूठो।

पौड़ी। मनमुख मोह गुबार है, दूजै भाए बोलै, दूजै भाए सदा दुख है, नित नीर विरोलै। गुरमुख नाम ते आई है, मथ तत कढ़ोलै, अंतर प्रगास।